0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुन एफएम 101.2 MHz
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुन एफएम 101.2 MHz
2: उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
3: Sound check. Surya Fan. It's studio time.
4: It's 7 AM. Bihanko 7 baje.
5: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलू दुतुन नगर पालिका 5 सोलू कुंभू

0: सोलु एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागी हम अभियान
1: सांचे सोलु एफएम स्टूडियो टाइम
2: इट्स 8 AM बिहान को 8 बजे
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुतुन्न नगर पालिका 5 सोलु खुम्बु
2: स्वर्ग काठमांडू में 90 मेगाहर्ज अब प्रस्तुत छ कार्यक्रम बदली दो नेपाल

0: Raio Rádio Sono é tempo.
1: Sono FM, XA1.2 MHz. Ujjwal bhavishyako lagi hamro abhiyan.
2: Sound check. Sono FM, studio time.
3: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ध्वारामाई ऑफसेट प्रेस सोलू दुतकुंड नगर पालिका 5 सोलू कुंडू

0: Sign check. Solu FM. Studio time.
1: It's 2 PM. New support 2 baje.
2: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुकुंडा नगर पालिका 5 सोलु खुम्बू।

0: শ্রীভাগরা কাষ্টবিচার জামুন রেডিও নেটওয়ার্ক।
1: तपाई अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। अब सुन्न सक्नुहुन्छ लोकलहरी।

0: उज्जवल एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: साइन चेक सोलु एफएम स्टूडियो टाइम
2: 5 PM साँझको 5 बजे
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई अफसेट प्रेस सोलु दुतकुंडा नगर पालिका 5 सोलु खुम्बु

0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकताको आवाज
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ज
0: सूचना शिक्षा र मनोरञ्जन को अपूर्व संगम
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ज
2: उज्जवल भविष्यको लागि हाम्रो अभियान
3: Sign check. Solu FM. Studio time.
4: It's 7 p.m. Start ko 7 baje.
5: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुतकुंड नगर पालिका 5 सोलु कुंभ।

0: Sign check. Solu FM is studio time.
1: It's 8 p.m. रात को 8 बजे.
2: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुकुन नगर पालिका 5 सोलु खुम्बू.

0: Sanjay. Sony FM, in studio time.
1: It's 9 p.m. Ratko 9 bajyo.
2: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुतकुंड नगर पालिका 5 सोलु खुम्बु
3: आदरणीय श्रोतावृन्द तपाई अहिले सुनिरहनु भएको छ सोलु एफएम सोलु एफएम मा अब तपाईले सुन्न सक्नुहुन्छ विभिन्न